ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Whoever has your name in his heart has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

0: अच्छा रुको एक मिनट।
1: यस सर। ये किस लिए सर?
0: अरे आज रामनवमी है।
1: ओ थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
0: और सुनो ये सबको बांट देना।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: जय सीताराम। मल मास और अधिक मास ऑल्सो नोन एज पुरुषोत्तम मास इज द एस्ट्रोलॉजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिशनल मंथ इन द हिंदू कैलेंडर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द साइकल्स ऑफ द मून। द लूनर मंथ इज अराउंड 29.5 डेज and the solar month is 30 to 31 days. As such, a solar year is made up of 300

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां आत्मतत्व प्रबोधाय दीप

एक बार बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय. थैंक यू भाई फॉर दोस ब्यूटीफुल भजन्स. लेट अस ऑल स्टैंड एट दिस टाइम एज वी हैव आवर फोर्थ नाइट ऑफ आवर गीता यज्ञ. कॉर्डियल वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. भगवान कंटिन्यू टू ब्लेस ऑल ऑफ यू इन अ वेरी स्पेशल वे.